वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 1978 की फिल्म कसमे वादे, किशोर कुमार, आशा भोसले, आती रहेंगी बहारें ऑन सनराइज।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: ये है हमारा हीरो कृष्णा, जिसने टैक्सी चलाते चलाते ऐसा चक्कर चलाया बेचारी संगम को ब्याह के घर ले आया।
3: अ हाउस फुल ऑफ केओस, अ गर्ल फुल ऑफ ड्रीम्स, वॉच अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ लव, फैमिली एंड इमोशंस। वॉच बरेली की बच्चन मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: A sweet reminder that the latest episode of the Sunrise Corner Shop podcast is now available for your viewing or listening pleasure. You decide. You can either watch it on YouTube or you can enjoy it on Spotify, Apple Podcasts and of course all major podcast platforms. Just search Sunrise Corner Shop Podcast. Also available at sunriseradio.com and on the Sunrise Radio app. Whilst you enjoy the conversation, do not forget to subscribe and follow the channel for more inspiring content. For now, main wapas aunga tere paas mein. ये वापस जो है ना टाइटल में V से स्पेल किया है, V, shouldn't that be a W? I'm just saying.
4: Yes.

0: क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इट्स गुड टू नो दैट लेडीज इवन बैक इन द 70s फेल्ट द सेम वे अबाउट बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड। आई लाइक द वे शी सेज, फिर से कहो, कहते रहो। वी लव इट, डोंट वी? ऑफ कोर्स वी डू।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: ये है हमारा हीरो कृष्णा, जिसने टैक्सी चलाते चलाते ऐसा चक्कर चलाया बेचारी संगम को ब्याह के घर ले आया।
0: अ हाउस फुल ऑफ केओस, अ गर्ल फुल ऑफ ड्रीम्स। वॉच अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ लव, फैमिली एंड इमोशंस। वॉच बरेली की बच्चन मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour. Buhe Bariyan, not that one, the new one, for your listening pleasure.

किमची इज बड़ी है मस्त मस्त कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण फ्रॉम द फिल्म मोहरा राइट डू समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट टुडे आई वांट यू टू वोट फॉर अ सॉन्ग Whichever song you vote for will come and play after the next song, right? So you've got about 2.5-3 minutes. But tell me which one of these you want me to play, right? Are you going to go for A? Chashini.

Run. Bow. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए